हम कीरे कर्म सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रकाश। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रकाश। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीर्त हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वट पाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपता सै मिल संगत गुण प्रकाश। जिन हर हर हर रस नाम न ना पाया ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश। राग गुजरी महला पंजवां। काहे रे मन चित में उदम जाया हर हर जियो प्रया। सैल पत्थर में जंत्य उपाय ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूगे काष्ट हरिया रहाऊ। जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किस की धारिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया। उडे उडे आवे सह कोसा तिस पाछे बिचरे शरिया। तन कवन खिलावे कवन चुगावे मन मैं सिमरन करिया। सब निधान दस अठ सिधान ठाकुर घर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइये तिरंत न पारा वरिया। राग यासा महला चौथा सो पुरख को अंकार। सत गुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम्मा अगम अपारा। सब त्या मैं सब त्या मैं तुध जी हर सच्चे सिर जनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जी आका दा तारा। हर त्या वो संतो जी सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू काट काटे अंतर सर्ब निरंतर जी हर एक पुरख समाणा। एक दा देख पे खारी जी सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाण। जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिनका पओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनक करें हर पूजा जी। तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बस मृत शास्त्र जी। कर करिया खट कर्म करंता।

दे मोहे बचाओ। सुखी बसे मोरू परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर छानज कर दे करे सब रण को वा सिंगरे पूर्ण होए हमारी आसा तुर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन शत्रु हमारे मारिये। आप हां दे मुझे उबरे मरण काल का त्रास निवरे हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तो जो करियो रक्षा राख लियो मोय राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा जू थी यो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैन जशन उपजायो आदि अंत कह अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रुन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर हस्थूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने। जब कर करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रीठ सब तारे आपे अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही तेरे तन रालम जानत बेद भेद अरे आलम निरंकार निर्भकार निरलंब आदि नील अनादि असंभ। ताका मोड़ उचारत भेदा जाको पेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महा मोड़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आपे अपने बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केहबित सजा प्रथम संसारा एक रूपे अनूप स्वरूपा रंक पयो राव की पूपा। अंडज जेरज से तज कीने उत भुज खान बहोर रच दीने कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं समट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आज जुगा स्वरूप से अंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सेख्यो बार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं। और अच्छा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्रै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय निहरि हो ताके ताप तनक मोहरि हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्वसके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दुख ते रहा खड़क के तुम्हें शरण तिहारी आप हां दे ले उबारी। सर्व ठौर मोह सहाय दुष्ट दुख ते लियो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने हो सिमृत शास्त्र वेद सब है बेद कहे हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे हो सब तोय बखाने हो दोहरा।

ही कर तेरे। करता तेरे सब किश है जिस दिन सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दियां आए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरु प्यारो, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित कारु सपागे, कार सपागे शब्द वाजे कला जित करतारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक ता सुख हुआ, तित कर अन हद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवे दुस्त गुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां।

लोभ मोह अभिमाना हरख सोग ते रह न्यारो नाहि मानि अपमाना आसा मनसा सगल त्यागै

कै संगत कर साध की, कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जान्या कोए, ऐसे मरने जो मरे बहुर, ना मरना होए।

कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए। राम कसौटी सोस है, जो मर जीवा होए। कबीर उजल पहर है कपरे, पान सुपारी खाहे। एक हर के नाम बिन, बादे जामपुर जाहे। कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे शेंक हजार। हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर पार। कबीर हाड जरे ज्यों लकरी, केस जरे ज्यों घास।

कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछता होंगे प्राण जाहेंगे छूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो अपने कर लावे आग, पांचों लड़का जर के रह राम लिवलाग।

कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पाल जोग। भगत ना छाड़ो राम की पावे निंदो लोग। कबीर लोग के निंदे बपोड़ा जेहे मन नाही ज्ञान। राम कबीरा रव रहे अवरत जे सब काम। कबीर परदेसी कै कागरै चहो दिस लागी आग। खिंथा जाल कोयला पई तागे आंच ना लाग। कबीर खिंथा जल कोयला पई खापर फूट मफूट। जोगी बपड़ा खेलियो आसन रही विभूत।

कबीर ने गुसाए बह गए थांगी नाही कोई। दीन गरीबी अपनी करते हुए सोए। कबीर बैसनों की कुकर भली साकत की बुरी माए। ओहो नित सुने हर नाम जस हो पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एह हरियारा ताल।

कबीर गंगा तीर जो कर करहे पीवहे निर्मल नीर। बिन हर भगत न मुक्त होए यों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पहया जैसा गंगा नीर।

राम स्नेही तौ मिले दोनों वरन गवाए। कबीर हर दी पीर तन हरे चून चेहन न रहाए। बलिहारी यह प्रीत को जह जात बरन कुल जाए। कबीर ऐसा सतगुर जे मिले तुठा करे पसाओ। मुकत द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ।

तै शाह बात न पुछी है कबहू ना लाई पाए। कबीर जेहे दरियावत जाते हो हट कै नाहीं कोए, सो दर कैसे छोड़िए सो जो दर ऐसा होए। कबीर डूबा था पै उबरियो गुण की लहर चबक, जब देख्यो बेड़ा जर्जरा तब उतर पर्यो हो फरक।

माखी चंदन पर हरे जहां बिगंध तहां जाए। कबीर बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ जेह नाही रोवनहार।

कबीर ऐसे होए परी मन को पावत कीन। मरने ते क्या डरपना जब हाथ से दौरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसी है गुन कौ मरिय रोए। अवगुणिया रे मानस है पलो न कह कोए। कबीर गागर जल भरी आज काल जह फूट।

कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जहां खिंचे तहां जाओ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम न चित ही एह जपनी क्या होए। कबीर बिरहो पयंगम मन बसे मंत न माने कोए, राम बेयोगी ना जिये जिये तं बौरा होए। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध, तेह मिलते उत्तम पे लोहो काठ निरगंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओहो नहीं सहया जाए, एक जो साधु मोहे मिले ओ तिन लिया अंचल लाए।

कबीर रमैया कंठ मिल चुक हे सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पांचों लड़के मार के रह राम ल्यों लाए।

अंधा लोग न जानई रहयो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चेह चढ़ी, सुनहो बीर मसान। लोग सबाया चल गयो, हम तुम काम निधान। कबीर मन पंखी पयो, उड उड दह दिस जाए। जो जैसी संगत मिले, सो तै सो फल खाए।

सोई फिर कै तू पया जाको कहता और। कबीर मारी मरो को संग की केले निकट जो बेर ओहो झूले ओहो चीरिए साकत संग नाहेर। कबीर पार पराई सिर चढ़े।

कबीरे कमरंते दोए मुए दोए मरन तहां चार चार मरन तहां छह मुए चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूं ना पाया ठौर। जिन हर का नाम न चेत्यो कहां भुलाने और।

जानते हुए बिना हो कबीर, जग में चेत्यो जान के जग में रहियो समाई। जिन हर का नाम न चेत्यो बाधे जन में आई। कबीर आसा करिए राम की, अवरे आस निरास।

कबीर है गए बाहन सकन कान लाख तजा फहराहे या सुख ते पिख्या पली जौहार सिमरत दिन जाहे।

जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाई है साथ ना लीजै कोए, पाछे पाओ ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांधियो जेहे जेवरी तेहे मत बंध हो कबीर। जय हे आटा लोन ज्यों सोन सुमान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैनाहा, अजहू जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाहा।

बैन उचरों तो नाम जी चरण कमल हृदय ठाऊं। कबीर सुर्ग नरक ते मैं रहे हो सतगुर के प्रसाद। चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कै कहे कहो कहे, ना को पतिया आए, हर जैसा तैसा ओ ही रहो हरख गुण गाए। कबीर चुगै चितारे भी चुगै, चुग चुग चितारे जैसे बचरे कूंज, मन माया ममता रे। कबीर अंबर कान हर छाया, बरख भरे सरताल, चातरक ज्यों तरसत रहे तिन को कौन हवाल। कबीर चकई ज्यों निस बिछो रे, आए मिले प्रभात। जो नर बिछड़े राम स्यों, ना दिन मिले ना रात। कबीर रै नायर बिछोरिया,

कबीर कारण सो पयो जो कीनो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एकै सिरजनहार। कबीर फल लागे फालन पाकन लागे आंब, जाए पहुँचे खसम को जो बीच न खाही कांब। कबीर ठाकुर पूजे मोल ले मन हठ तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार भूले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजे सब संसार इस प्रवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागत की ओबरी मास के कर्म कपाट, पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाट।

कबीर साकत ते सुकर भला रखे अच्छा गाऊं। ओहो साकत बपुरा मर गया कोई ना ले है नाऊं। कबीर कौडी कौडी जोर के जोरे लाख करोर। चलती बार ना कछ मिलियो लई लंगोटी तोर। कबीर बैसनो हुआ ता क्या पहया माला मेली चार।

कबीर गंग जमुन के अंतरे सहज सुन के काट। तहां कबीर है मट किया खोजत मुन जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभै ओड़।

कबीर थुनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर। कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर।

तब हिरण की साट। कबीर काम परे हर सिमरिय, ऐसा सिमर हो नित, अमरापुर बासां करहु, हर गया बहोरै बित। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावै नाम। कबीर जेहे मार्ग पंडित गए, पाछै परी बहीर, एक अब घट काटी राम की। तेहे चढ़ रहे हो कबीर, कबीर दुनिया के दोखे मुआ, चालत कुल की कान।

जो जान निर्दावे रहे सो गणेन्द्र सो रंक। कबीर पाल समूह सरवर परा पी ना सके कोई नीर।

कबीर कोठी काठ की दहदिस लागी आग। पंडत पंडत जल मुए मूर्ख उबरे भाग। कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाय। बावन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए। कबीर संत न छाडै संत ई ज्यों कोटक मिलहे असंत। मलयागर पयंगम बेड्यो ता सीत लता नात जंत। कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान। जिन ज्वाला जग जा रिया सो जन के उदग समान। कबीर सारी सिरजन हर की जाने नाहीं कोय। कै जाने आपन तनी कै दास दीवानी होए। कबीर भली पई जो भव परया दिसा गई सब भूल। ओरा घर पानी भया जाए मिल्यो ढल कूल। कबीरा तू रस केल कै पुरिया बांधी दे। चार दिवस को पेखना अंत खेह की खे। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब दे। गुरु गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खे। जहां अन पाओ तहां पै नहीं जहां पाओ तहां हर नाहे। कहियो कबीर विचार कै संत सुनहो मन माहे। कबीर जिन्हों किछु जान्या नहीं तिन सुख नींद बिहाय। हम हो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाय। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और। लागी चोट मुरम की रहे ओ कबीरा ठौर। कबीर

कबीर मुल्ला मनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होए। जा कारण तू बांग दे, दिल ही भीतर जोए।

जावे आपा पर का मिट गया, जात देखो तत तू। कबीर विकारे चितवते, झूठे करते आस। मनोरथ कोई ना पूरे हो, चाले उठ निरास। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। हित उत गत हे ना डोलई, जिस राखे सिर जनहार।

चिंता पे आप कराए सी, अचिंत पे आपे दे, नानक सो सलाही है जे सबना सार करे महला पंजवा। कबीर राम न चेत्यो फिरया लालच माहे, पाप करंता मर गया औद पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिन ठी बात। कबीर केसो केसो कुकी है ना सोई है आसार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली भान भया, मन कुंचर मैं मंद, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी पारख आगे खोल, गोई आए मिले गो गाहकी ले गो महंगे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माँ टुके पल पल गई बिहाए,

कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग। छाया रूपी साध है, जिन तजिया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए, बारहा मास फलंत। शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत।

सुफलफलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट, मुकत पदार्थ पाई है ठाक नव घट घाट। कबीर एक घड़ी आदि करी,

कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबेर सा तल जाहे।

सब रस खेलो पीसो किसी लखाबो नाहे। आठ जाम चौसठ करी तो नरखत रह जियो। नीचे लोयन क्यों करो सब घट देखो पियो। सुन सखी पिय मह जियो बसै, जी मह बसै के पियो। जियो पियो बुझो नहीं घट मह जियो के पियो।

खेलत खेलत हाल कर, जो किछ होए ता होए। कबीर जो तुहे साध परम की पाके सेती खेल। काची सरसों पेल कै ना खाल पही ना तेल। ढूंढत डोल हे अंध गत अर चीनत नाही संत।

वसी रब हयालिया जंगल क्या टुडे फरीदा इन्नी निकी जंगी है थल डूंग।

रहा तुट ने हो पिजोस जो कंबली अल्लाह वर्षों में हो जाए मिला तना सज्जना तुटो नाही ने हो फरीदा मैं भुलावा पगदा मत मैली हो जाए गहला रूहना जानई सिर भी मिट्टी खाए पिजोस जो कंबली अल्लाह वर्षों में हो जाए मिला तना सज्जना तुटो नाही ने हो फरीदा मैं भुलावा पगदा मत मैली हो जाए गहला रूहना जानई सिर भी मिट्टी खाए।

वसी दोजक संधि पाहे महला पंजवा फरीदा खालक खलक मैं खलक वस रब माहे मंदा किसनो आखिया जा तिस बिन कोई नाहे।

मासनत दुखाए फरीदा गोर निमानी सड़ करे निकरया करयाओ सर पर मैं थे आवना मरणो ना डरिया हो।

आप सवारे महमिले महमिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए कंधे उते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर

काए पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे नानक घर ही बैठे सौ मिले जे नियत रास करे। महला पंजवां।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सरब रहो भरपूर सगल कट रहो बेआपे ब्यापत देखिया जगत जाने कौन तेरी गत सरब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अभिगत आपे आप उत्पते कै तू ही एक अंत नाही तुम पत हर अंत नाही पारा वार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण के आधार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जिह क्या बखाने हा के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार पर ही ते पर अपर अपार पार अपनो पावन कर मंत्र न दूसरो तार उपत परलो एक निमक तू कर आन नाही संसर उजियारो निर्मर कोट पराचित जाहे नाम लिये हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक जी क्या बखाना हा कै बल बल बल बल सद बलिहार।

हर गुण नाही अंत पारे, जीजंत सब थारे, सगल को दाता एक लख मुरारे, आप ही तारण तारे, कुदरत है देखारे, बरन चहन नाही मुख नाम सारे।

सर्व गुण निदानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं उचित उचो जाने जय प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन पमा दियो बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पियो अलख्य पार दियो अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखान है हाँ कै बल बल बल बल सद

0: मान मग जोहन हीत चीत दे लेले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहु तेले रखी निरारी तावन पावन कुर कमावन एह बिद करत औद तन जारी कर्म धर्म संजम सोचने मा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरख स्थावर बोह बिद जोन प्रमयो अत पारी खिन खिन किन पल चसा नाम ने सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर
1: एक तिल ताकु मर्म न पावत परे पर प्रीत परिमरस भक्ति हर जन तक दर्श समावत तिसह त्याग ज्ञान को जच मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बेरंग करत प्रमुख कूप गुबार परयु है इता गाभ्य आकाश नमावत बिष्टायस्त करमुद्र परयु है दह दिशताय महाबिकया को परतन शीन ज्ञान हरियु है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यु जमदूतन डन मृत मरयु है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है प्रेम भक्ति उदर से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण हुई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुखारु सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिंस जाहे हर नाम उचारी इशनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ धारी साजन मीत सका हर बंधप जी तान प्रप्राण धारी ओट गही स्वामी समर्था नानक दास सदा बलहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंद्यो ना जात बिदे मंदर समग पावक जर्यो न जात रयो जन तूर लग नीर न सक सबोर चलें हर पंत पग नानक रोग दुख अगमोष दे हर नाम खग उद्यम कर लागे बो पंती बिच रहे अनक शास्त्र

जटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावत, जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका, अनक पंथ थाटें कर थटुआ। सोइये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद, एक मन पुरख त्याय बरदाता, संत सहार सदा।

मथुरा को प्रभ सर्ब में अर्जन गुरु भगत कहित पाए रहो मिल राम स्यों। अंत न पावत देव सब मुनि अंदर महा शिव जोग करी। फुन बेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ नयाल करी। रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जन माहि तरी। जग और न जाहि महा तम मैं अवतारियो जागर आन कियो। तिन के दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धत ते मत चुकै रे मन भेद बिभेद न जान बियो। परता शिरदै गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल भेख अपार तास बिन अवर ना कोई। मन बच जिन जानयो भयो ते संसार सोई। तरण गगन नव खंड मैं जोत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै। नित प्राण बाचिया वेद ब्रह्मा मोगावै। अजय चवर सिर ढुलै नामे अमृत मुख लियो। गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो। हर बंश जगत जस संचरियो सु कवन कह श्री गुरमयो। देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो। हर सिंघासन दियो श्री गुरु तहां बैठायो। रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै। असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै। काटे सुपाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो। शतर सिंघासन पृथ्वी

आया कर संजोग पूला दैत न समझई तिन प्रभ किए काम नानक वे परवासो किरत न मिटई राम। लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर महला तीजा। लाहौर शहर अमृतसर सिफती दा घर महला पहला। उदो सा है क्या निशानी

सुरती पत होए सरफै सरफै सदा सदा इवें गई विहाए। नानक किसनो आखिया विण पुछिया ही ले जाए। दोष न देओ राय नो

होय। दुख विसारण शब्द है जे मन बसाए कोय, गुर कृपा ते मन बसाए करम प्राप्त होय। नानक हों हों करते खप मोए, खून लख असंख सतगुर मिले सो उबरे, साचे शब्द अलंख जिन्ना सतगुर इक मन सेविया, तिन जन लागो पाए। गुर शब्दी हर मन वसै, माया की भुख जाए।

जन नानक शब्द विचार। हर हर नाम त्याय मान, हर दरगाह पावे मान, किरविक पाव सब कटिय होमे चुके गुमान। गुरमुख कमल विकसया सब आत्म ब्रह्म पछान, हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम। तनासरी तनवंती जानिए पाई, जांस्त गुरु की घर कमाए, तन मन सौंपे जी सो पाई, ले हुकुम फेराओ, जां बैसा मैं बैसा पाई, जां भेजे तै जाओ। ए वड धन होर को नहीं पाई, जे वड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा पाई, सदा सच्चे कै संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाया पाई, अपने पत के साध आपे खाए, तुसका क्या सा लाहिए पाई, दर्शन को बल जाए। सत गुर विच वड्डियां वड्याईयां पाई, करम मिले ता पाए, एक हुक्म मानना जाननी पाई, दूजे पाए फिराए। संगत ढोई ना मिले पाई, बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तना मनाए सी पाए, जना तुरे कमाया नाओ। तिन बिटो हो वारिया पाई, तिन को सद बलिहारे जाओ, से दाड़ियां सचियां जे गुर चरणी लगन। आन दिन सेवन गुरे अपना, आन दिन आनंद रहन, नानक से मुंह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां, सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वसिया, सत गुर माए समाहे, सच्ची रासी सच तन उत्तम पदवी पाए, सात सुने सच मान लैन, सच्ची कर कमाए। सच्ची दरगाह बैसना, सच्चे माए समाए, नानक बिनस्त गुर सच न पाईए, मन मुख भूले जाहे। बाबी हा प्रयो प्रयो करे, जलनिद प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया, सब दुख निवारण हार, तिस चुके सहज उपजय, चुके कुक पुकार, नानक गुरमुख शांत होए, नाम रखो रतार। बाबी हा तू सच चो सच्चे सो लिवलाए, बोलिया तेरा थाए पवै, गुरमुख होए लाए। शब्द चिंत ख्योतर मन लै रजाए, चारे कुंडा झुक वरसदा, बूंद पवे सह सुभाए, जल ही ते सभी उपजाए, बिन जल प्यास न जाए। नानक हर जल जिन पिया, तस भूख ना लागे आए, बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुभाए। सब किश तेरे नाल है, सतगुर दिया दिखाए, आप पछाणे प्रीतम मिलै, वटा शह बरलाए, चिम चिम अमृत वरसदा, तृष्णा भुख सब जाए। कूक पुकार ना होवई, ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सुख सवन सुहागणे, सच्चे नाम समाए। तुरा खसम भेजिया, सच्चे हुक्म पठाए, इंद वरसे दया कर गूढ़ी शह बरलाए। बाबी हे तन मन सुख होए, जा तत बूंद मो पाए, अंतन बहुता उपजय, धरती शोभा पाए। आन दिन लोक भगत करे, गुर के शब्द समाए, आपे सच्चा बख्श लय, कर कृपा करे रजाए। हर गुण गावो कामणी, सच्चे शब्द समाए, पैका सह शिंगार करियो, सच रहो लिवलाए। नानक नामो मन वसै, हर दर गाले छडाए, बाबी हा सगली धरती जे फिरे, उड़ चढ़े आकाश, सतगुर मिले जल पाईए, चूके भूख प्यास। जियो पिंड सब तिसका, सब किश तिसकै पास, बिन बोलिया सब किश जानदा, किसे आगे कीचे अरदास। नानक घट घट को वर्तदा, शब्द करे प्रकाश, नानक तसे बसंत है, जे सतगुर सेव समाए, हर उठा मंत्र सब पर फड़े, सब जग हरियावल होए। शब्द सदा बसंत है, जे तन मन हरिया होए, नानक नाम न विसरे, जिन सिरिया सब कोए, नानक तना बसंत है, जिन्ना गुरमुख वसिया मन सोए।
हर उठे मंतन परफड़े सब जग हरिया होए वडड़े चाल चलुंबलै ना बड़ा लइए किस। नाव लइए परमेश्वर है भन्नण काढ़न समरथ हर अट पी तू तू करें बोलें भली बाण साहेब सदा हदूर है क्या उच्ची करें पुकार। जिन जगत उपाय हर रंग किया तसैब कुर्बान आप छोटे ता शामिल है सचाए विचार। हाँ मैं फिका बोलना बुझ ना सका कार वाण त्रिण तिर पवन तुझे त्याइंदा अंदन सदा विहान। बिन सतगुर किने ना पाया कर कर थके विचार नदर करे जे अपनी ताय आपे लें सवार। नानक गुरमुख जनी त्याया ऐसे प्रवान जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना मैले वेस नानक घर बैठिया जोग पाई है सतगुर कहे उपदेश। चारे कुंडा जे पवें बेद पढ़े जुग चार नानक साचा पेटे हर मन वसै पावें मुख द्वार। नानक हुकम वरतै खसम का मत पवी फिरे चल चित मनमुख सों कर दोस्ती सोके पुछे मित गुरमुख सों कर दोस्ती सतगुर सों लाए चित। जमन मरण का मूल कटिए ता सुख होवी मित भुलिया आप समझाए सी जा को नदर करे। नानक नदरी बाहरी करण पला करे श्लोक माला चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। वड भागियां सुहागणे जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत प्रकाशिया नानक नाम समाए। वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले ते खुतर है तन मन शीतल होए। वाह वाह सतगुर सतपुरख है जिसनों समत सब कोए। वाह वाह सतगुर निर्वैर है जिसनिंदा उस्तत तुल होए। वाह वाह सतगुर सुजान है जिसे अंतर ब्रह्म विचार। वाह वाह सतगुर निरंकार है जिसे अंत ना पारा वार। वाह वाह सतगुरु है जे सच दृढ़ाए सोए। नानक सतगुर वाह वाह जिसते नाम प्राप्त होए। हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अंधन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद। वड भागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहया बोड नमंतन भंग। मोह प्रिया सोने क्यों सज्जन बिलै प्यारिया हों टूटे दीतन सज्जन सच सवारिया सतगुर मैंडा मित है जे मिले ता ए मनवारिया। देंदा मोह परदास हर सज्जन सृजन हारिया नानक हों पर पाली अपना सतगुर नाल दिखा लिया। हाँ खड़ी निहाली पंद मत मोह सचन आवै कुवाण मिलावे अज मैं फिर मेल मिलावे। हाँ जियो करी तस्वटो चौख नहीं है जो मैं प्री दिखावे नानक हर होए दयाल तां गुर पूरा मिलावे। अंतर जोर हम तन माया कूड़ी आवे जाए सतगुर का फरमाया मन ना सकी दुतार तरिया ना जाए। नदर करे जैसे अपने सो चले सतगुर पाए सतगुर का दर्शन सफल है जो इच्छे सो फल पाए। जिन्नी सतगुर मन्या हो तन के लागो पाए। नानक दा का दास है जे आन दिन रहे लिवलाए जिन्ना प्री प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ति है। नान

हरे जिना गुरमुखी अंदर ने तै प्रीतम सच्चे लाया राती अतडे नानक प्रेम समाया। गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाइये अनदन रहे आनंद नानक सह समाइये। सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए कबहू ना होवे भंग नानक हर गुण गाइए। जिना अंदर सच्चा ने क्यों जीवन प्रेम होणिया। गुरमुख मिले आप नानक चरी विसुनिया। जिन को प्रेम प्यार तो आपे लाया कर्म कार नानक ले हो मिलाए मैं जाचक दीजे नाम हार। गुरमुख हसै गुरमुख रोवे जे गुरमुख करे साई भगत होवे। गुरमुख होवे सो करे विचार गुरमुख नानक पावे पार। जिना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार तिन के मुख साधी उजड़े तित सच्चे दरबार। तिन बहिंदिआं उठदिआं कदे ना विसरै जे आप बख्शे करतार। नानक गुरमुख मिले ना विछुड़ै जे मिले सृजनहार। गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार नदर करे जिसे अपने तसलाए हित प्यार। सतगुर की

0: मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए, पुत कलत कुटुंब है माया मोह वधाए। दरगा लेखा मंगिए कोई अंत न सकी छाए, बिन नामे सब दुख है दुखदाई मोह माए। नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछुड़ सब जाए। गुरमुख हुक्म मने शाह केरा, हुक्मे ही सुख पाए। हुक्मो सेवे हुक्मे आराधे, हुक्मे समय समाए।
1: फल पाई सदा सुहागण जी हुक्मे बुझे, सतगुर सेवै लिवलाए। नानक कृपा करे जिनी उपर, तिन हुक्मे लै मिलाए। मनमुख हुक्म न बुझे बपुड़ी, नित हमें कर्म कमाए। वर्त नेम सुच संजम पूजा, पाखंड भरम न जाए। अंतरों कसुद माया मोह बेदे, ज्यों हस्ती शार उडाए। जिन पाए तिसै न चित है, बिन चेते क्यों सुख पाए। नानक परपंच किया तुर करतै, पूर्व लिखिया कमाए। गुरमुख प्रतीत पई मन मान्या, अन दिन सेवा करत समाए। अंतर सतगुर गुरु सब पूजे, सतगुर का दर्श देखै सब आए। मनिए सतगुर परम बिचारी, जित मिलै तिशना भोग सब जाए। हाँ सदा सदा बलिहारी गुर अपने, जो प्रभ सच्चा दे मिलाए। नानक करम पाया तन सच्चा, जो गुर चरणी लगे आए। जिन प्रिया स्यों ने से सज्जन मैं नाल, अंतर बाहर हाँ फिरा पी हिरदै रखा संभाल। जिन्ना एक मन एक चित त्याया, सतगुर सौ चित लाए। तिन की दुख भुख होमै वड्डा रोग गया, निर्दोख भय लिवलाए। गुण गावै गुण उच्चरै, गुण मैं समय समाए। नानक गुर पूरे ते पाया, सहज मिलिया प्रभाए। मनमुख माया मोह है, नाम ना लगे प्यार। कूड़ कमावै कूड़ संगरै, कूड़ करै आहार। बेख माया तन संच मरै, अंत होए सब इशार। कर्म धर्म सुच संजम करै, अंतर लो विकार। नानक मनमुख जी कमावै, सो थाए ना पवै दरगा होए खुआर। सबना रागां विच सो भला पाई, जित वस्या मन आए। राग नाद सब सच है, कीमत कई न जाए। राग नाद बारा इनी हुक्म न बुझया जाए। नानक हुक्मै बुझै तिन्ना रास होए, सतगुर ते सोजी पाए। सब किश तिसते होया, ज्यों तिसै दी रजाए। सतगुर विच अमृत नाम है, अमृत कह कहाए। गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम त्याए। अमृत बाणी तत है, गुरमुख वस मन आए। हृदय कमल प्रगाशया, ज्योति ज्योत मिलाए। नानक सतगुर तिनको मिलियो, जिन तुर मस्तक भाग लिखाए। अंदर तिशना अग है मन मुख भुख न जाए, वो कुटम सब कूड़ है कूड़ रहा लपटाए। अन दिन चिंता चिंतवे चिंता बदा जाए, जमन मरण न चुकई हो मैं कर्म कमाए, गुर शरण आई उबर नानक लय छाए। सत गुर पुरख हर ध्याएं दा, सत संगत सत गुर पाए, सत संगत सत गुर सिम दे हर मेले गुर मिलाए। ए पौ जल जगत संसार है गुर बोइत नाम तराए, गुर सिखी भाणा मन्या गुर पूरा पार लंघाए। गुर सिखा की हर तूर दे हम पापी पीगत पाहें, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलया आई। जम कंकर मार बेदारियन हर दरगाह लय छाई, गुर सिखा नो शाबाश है हर तुठा मेल मिलाई। गुरपूरै हर नाम दड़ाया जिन विचों भरम चुकाया, राम नाम हर कीरत गाए कर चानन मग दिखाया। हौ मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम वसाया, गुरमती जम जो ना सकै सचै नाए समाया। सब आपे आप वरतै करता जो पावै सो नाए लाया, जन नानक नाउ लए तां जीवै बिन नावै खिन मर जाया। मन अंतर हौ मैं रोग भ्रम भूले हौ मैं साकत दुर्जना, नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सजना। गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख न लभई सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सत गुर नाम दड़ाया मन अंत न काहू डोले, जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले। श्लोक महला पंजवा। एक ओंकार सत गुर प्रसाद रत्ते सेई, जे मुख न मुड़न जिनी सिंझाता साई। चढ़ चढ़ पाउंदे कच्चे बिरही जिन्ना कारण आई, तनी विहूना पाट पटंबर पाई सेती जाले, धूड़ी विच लड़ंदड़ी सोहा नानक तैशै नाले। गुर कै शब्द आराधी है नाम रंग बैराग, जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू एह राग। जामू एक तां लख तो जित्ती पिन्नने दर कितड़े, बामणा बिरथा गयो जन्म जिन कीतो सो विसरे। सोरठ सोरस पीजिया कबहू न फीका होए, नानक राम नाम गुण गाइया दरगाह निर्मल सोए। जो प्रभ रखे आप तिन कोई न मारई, अंदर नाम निधान सदा गुण सारई। एका टेक अगम मन तन प्रभ धारई, लगा रंग अपार को ना उतारई। गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारई, नानक नाम निधान हृदय उर हारई।

रागमाल राग एक संग पंच बरंगण संग लापे अठो नंदन। प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग ने संग उचरही। प्रथम पैरवी बिलावली पुन्या की गावे बंगली। पुण्य असले की पै बारी ये पैरों की पांचो नारी। पंचम हरक दिशाक सुनावे बंगाल मद माधव गावें।

पात्र दुतिया माल को सकिया लापें संग रागने पांचों थापें गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सी होती उचारी तनासरी ये पांचों गाई माल राग कौसक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक यो भारा खौ खट्यो पौरानंद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुण्य आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सोत उठे तान कलोल कायण तार मिलावे ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस्व हीरी ले पार जा संग लाई पांचों आर जा स्वरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगरन सुहाए सरस बान ओ आह बिनोदा गाम है सरस बसंत कमोदा

सालू सारंग सागराय और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर। खाष्टम एक राग वै गावे पांचों संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुनगुनी।

गन के 18 10 20 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां

तेरै, घर ता तेरै सब किश है, जिस दें सो पावै, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावै। नाम जिन कह मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कर तेरै, साचा नाम मेरा आधारु। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दिया ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित कर सपागे, कर सपागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तो दवास कीते, काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से, नाम हर कह लागे,

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ समरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याइये जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निदावे ताए, सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता, तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया, धर्म नहीं हारिया सिखी के सां सुवासा नाल निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्व सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फतेह ब्रिद की पैज पंथ की जीत, श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान, दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सरजी देश नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल, धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मादा रखा आप वाहे गुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ देश दा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे, जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणिया दे माण नितानिया दे तान निवटिया दी ओट, सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमला पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है पातशाह जीओ आप जी दे हजूर, नगर सूसा इलाका दियां समूह संगतां वल्लों बाबा जवाहरदास दे सलाना जोड़ मेले नूं मुख रखदिआं अते दर घर दे प्रीतवान सेवक परिवार भाई कुलदीप सिंह सोही सिंह एक्सावेटिंग कंपनी वल्लों पातशाह जीओ हर साल दी तरह बच्चे रीत कौर दे जन्म दिन नूं मुख रखदिआं सेवक परिवारां ने रल मिल के किरत कमाइया विचों दसवंध कढ़दिआं तुरकी बाणी आई तिन सगले चिंत मिटाई दे श्री अखंड पाठ साहिब परसों रोज तो आरंभ करवाए सन पातशाह जीओ आप जी की महान कृपा बख्शिश रहमत हुई है। ऐस वक्त निर्विघनता सहित समाप्ति उपरंत आनंद साहिब छे पौड़िया की अरदास इन्ने अरसे दे विच आप जी दे बच्चियां पासों बाणी दा पाठ करदिआं सेवा करदिआं पवित्र चरण हजूरी अंदर विचरदिआं होईआं बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा अगां तों सुमत बख्शिश करनी भाई कुलदीप सिंह सोही परिवार अते नगर सूसा इलाका दीआं समूह संगतां दे सिर ते मेहरां भरिआ हथ रखणा। दुखां कलेशां दरिद्रां विघनां दे नास सुखां दे प्रकाश चढ़दीआं कला बख्शिश करनीआं पातशाह जीओ। समूह संगत दी कीती हुई अरदास बेनती दर ते प्रवान करनी कदम कदम लेखे विच लाउणा आप जी दियां बख्शियां दातां दे विचों तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनियां दरों करों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना। मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां देसां परदेसां विच विचरदिआं बच्चियां दे सिर ते मेहरा भरिया हथ रखना बच्चियां नूं माता पिता दे आग्याकार उच्च विद्या दी दात नेक मार्ग उत्ते चलण दी प्रेरणा करनी बादशाह जीओ। सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाडे खेत दे महावाका अनुसार पातशाह जीओ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾ ਸਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਾਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੌਸ਼ਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਾਧੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬਹਿ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ।

ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग रहाओ। जान के चरण वसै मेरे ही रहै,

दुखदारू सुख रोग प्या जा सुखताम ना होई। तू करता करना मैं ना ही जाऊ करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या राव। जात मैं जोत जोत मैं जाता अगल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिवत सवाले जिन कीती सो पा।